अच्छा देखो बाबा सानू कह के गया पर जिहड़ी कुदरत आ ना असल विच वैस्टर्न लोकां ने सांभी होई आ। कुदरत नूं सांभणा निवाजणा सब तों ज़्यादा सानू दस्सिया गया पर असीं कुदरत दे वैरी बणे होए आ। पाणी गंदा कीता, हवा गंदी कीती ते कुदरत नूं तां शर्मशारी करता असीं।

वर्गी मां बोली है मावा वर्गी ठंडिया मिठिया छावा वर्गी बाल पुने दे चावा वर्गी ते सजण दियां खुलियां बाहां वर्गी खुलियां डुलियां थावां वर्गी मेरे पिंड नूं जांदे रावां वर्गी आओ इस दी शान वधाईए एदे सोले रल मिल गाईए क्योंकि बोली ना रही तो कवितावां रुल जानियां मावां दियां लोरियां दवावां रुल जानियां एडे महंगे मुल वाली चीज ना।

0: is AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at AM530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब दे अमीर विरसे दी पुक्कल चो यादां दे संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिबा वे चित दे वाहवा का अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: पंजाबी लहरां
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नो,
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नो,
1: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नो,
0: ठंडियां छावां जियां मामां नो,
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरुआं नो,
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नो,
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दियां छणकारां नो,
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे 7 दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच।
2: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.
3: ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪੱਕਦੀ ਰੋਟੀ ਸੱਚ ਹੈ,
4: ਮਿੱਟੀ ਚੁਗਦੀ ਫਸਲ ਸੱਚ ਹੈ,
3: ਖੁਰੋ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ।

सतगुर होए दयाल त सरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कबहू चूरी है, सतगुर होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके हैं जी एक बार फिर एक खूबसूरत चढ़ती कला वाली सवेर दे विच, खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम खूबसूरत श्रोतों के लिए। मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधु स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 7:04 हो चुके हैं, थोड़ा साड़ा साथ होने तो लेके 8 बजे तक बने रहना। तो मेरे नाल पंजाब की धरती तो निरपक्ष निडर आवाज़ रमेश शहरपुर जी जुड़ चुके हैं।

0: Aldi Poncho, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 905-451-2600.
1: Rupinder Garewal Law Office. Real estate transaction, will banaunle, family law, ja fir power of attorney. All services under one roof. Community da janya pehchaniya naam, Rupinder Garewal. Barrister, solicitor and notary public. Located at Chinkuzi and Bavet. For all services call 905-497-1211. 905-497-1211.
2: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है. ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने, ते कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने, जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जाती हैं. पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस दे लई लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस. तुहानू डेट नू प्रॉपरली असैस करन, मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाण विच हेल्प करदे ने. इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो. ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200.
3: चोपड़ा, रोहन चोपड़ा, चोपड़ा ब्रदर्स, चोपड़ा फैमिली तुहाडे लई हाजिर है. 42 साल तो टॉप सेल इन ओंटारियो कार डीलरशिप दे विच टॉप दा नाम मिल्टन फोर्ड तो चोपड़ा. कितों भी गड्डी खरीदने तो पहला मिल्टन फोर्ड ते कॉल कर सकते हो 416-302-9941.
4: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी. ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी. हाँ ब्रो, फूड वाज अमेजिंग, फ्रेश, हॉट ते फुल टेस्ट वाला. गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए. सर्विस भी टॉप नॉट सी. टाइम ते डिलीवरी, प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज. मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी. करीज, रोटी, राइस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट. ऑनेस्टली असी तां हुण हर फंक्शन लई तवा किचन ही चूज करांगे. Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton. 905-790-1699. 905-790-1699.
5: ਭੈਣ ਜੀ, ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਟੇਸਟ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ. ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਬਫੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ.
6: ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ. ਮੈਂ ਨਾ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਖਾਧੀ ਸੀ. ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਫੂਡ, ਇੰਨਾ ਫੂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਥੱਕ ਗਈ, ਪਰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ.
7: ਤਵਾ ਕਿਚਨ, 50 ਸਨੀਵੇਲ ਗੇਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਮਾਉਂਟਨੈਸ਼ ਐਂਡ ਬੋਵੇਡ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.tawakitchen.ca. 905-790-1699. 905-790-1699.
8: याद है मैनू जदों मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी, किन्नी परेशान हो गई सी मैं. इंश्योरेंस नाल डील करना, गड्डी पेंट कराना, किन्ने झंझट. थैंक्स कर दियां मैं स्पीडएक्स ऑटो कलिजन वालियां दा, जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील कीता, रेंटल कार भी दित्ती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दित्ता. ते तुसी भी पहुंचो स्पीडएक्स ऑटो कलिजन, 181 रदरफोर्ड रोड साउथ, यूनिट 11, ते या कॉल करो 416-277-9221. 416-277-9221.
9: ਓ ਯਾਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ. ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ.
10: ਨਿਰਬਲ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚਾਂ ਟੰਗੋ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ.
11: ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਪਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ.
12: ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਟ੍ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ.
13: ਰੇਡੀਓ ਆਵਾਜ਼, ਰੇਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 9 to 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ 10 to 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੇ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-518-3200.

0: 993 7773. थैंक यू
1: जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू थोड़ा। ते लो जी, हुण तुसीं कॉल कर सकदे हो, थोड़ी कॉलां बड़ियां मिस हो गईयां विच, जदों मेरे स्पोंसर आउंदे नाल ही थोड़ी कॉल आ जांदी है ते फिर ड्रॉप हो जांदी है। सो हुण तुसीं कॉल कर सकदे हो, किसी ने भी कोई अपना व्यू पॉइंट साझा करना ते 647-874-1313 ते गलबात कर सकदे हो जी। ते लो जी, मैं नंबर तुहानूं दवां दुआबा टूर्स एंड ट्रैवल्स दा। दीपांश कोल इंडिया जाण वास्ते टिकटां आईयां होईयां ते इह टिकटां दे रेट बड़े ही घट हैगे आ, क्योंकि पहलां वी आपां ने जदों अनाउंस कीतीआं ना बस ओह नाल दी नाल सेल हो गईआं, पर रेट इहनां दे कोल आउंदे रहिंदे आ। सो हुण वी जे तुसीं इंडिया नूं जाणा ते वधिया रेट ते टिकटां लैणा चाहुंदे हो एयर फेयर ते सर्विस, तां दुआबा टूर्स एंड ट्रैवल्स दी नंबर वन ही है। चाहे तुसीं बैक होम जाना है, चाहे तुसीं वैसे किते भी यूरोप घूमन जाना है, जां फिर उंज टूर ट्रिप कोई क्रूज ते जाना चाहुंदे हो, तां वी तुसीं वधिया जिहड़ियां टिकटां उह लै सकदे हो दुआबा टूर्स एंड ट्रैवल्स। दुआबा टूर्स एंड ट्रैवल्स जिहड़े दीपांश है ना, वह कहिंदे आ भी जदों भी किसी की कॉल आउंदी है ना कोई भी इनफॉर्मेशन लैण वास्ते नाल दी नाल जिहड़े रिप्लाई की जाती है। सो इदां दी सर्विस तुहानूं बड़ी घट मिलनी है। कई बार ये हुंदा भी हाँ टिकट विक गई ते फिर उस तो बाद कई तो कॉल नहीं चकते, बट दुआबा ट्रैवल्स नूं तुसीं कॉन्टैक्ट करना ते इदां दी कोई तुहानूं किसी किस्म की कंप्लेंट नहीं होगी। 905-673-1400 नंबर है, 905-673-1400 ते तुसीं दुआबा टूर्स एंड ट्रैवल्स नूं करो कॉन्टैक्ट। ते लो जी, गल्लां बातां थोड़े नाल कर रही हां मैं ना, एक लेटेस्ट न्यूज़ देख रही हाँ और यह हैगी है एलोन मस्क दी। ये कहंदे है कि अगले 10 सालां दे विच कहंदे पैसे दी जिहड़ी अहमियत है ना वह घट सकती है। यह एलन मस्क ने वड्डा दावा कहंदे यह किया कि क्योंकि AI आ जानी है ना अगले 10 सालां दे विच, बस कहंदे AI ते रोबोट इन्हां दी इन्नी वड्डी मात्रा दे विच कहंदे उपलब्धि हो जानी है इन्हां दीआं सेवावां दी कि बस बंदे नूं फिर पैसे दी इन्नी लोड़ पैणी नहीं। सो कहंदे पैसे दी कीमत जिहड़ी बड़ी घट जानी है अहमियत। सो देखदे आ हुण, क्योंकि इन्हां नूं पता हुंदा भी अगे जो क्योंकि इह कुछ ना कुछ अगे अगे करदे रहिंदे आ ना एडवांसमेंट, जिहदे करके फिर इन्हां नूं पता हुंदा भी जदों आह चीज़ां आ जाणियां जां इन्हां दा रोल ज़्यादा प्ले होण लग जाणा ते बाकी चीज़ां दी अहमियत जिहड़ी घट जाणी। सो कहिंदे अगले 10 सालां दे विच पैसे दी अहमियत घट सकदी आ। इह एलन मस्क ने एक बहुत वड्डा दावा किया। तो लो जी, एक गीत सुनते हैं तो यह गीत बड़ा ही प्यारा है, तो तुसी सुनोगे तो थानू भी आनंद आ जाना।

0: मिड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों, आप सबका स्वागत है। आशावादी उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज दा दिन अच्छा गुजरिया होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नेशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। अगे चल के वतनों दूर तुहाडे लई पेश कीता जाएगा। सुखी निजर मनप्रीत जी तुहाडे लई, सॉरी किरण जी तुहाडे लई प्रोग्राम पेश करनगे। मनप्रीत जी हिंदुस्तान तों खबरां तुहाडे लई लैके आउणगे। सूरज सिंह 6:03 ते आया ते 8:44 ते चले जाना। मामा चंद सिंह 9:05 शाम नूं आएगा ते 5:52 सवेरे जाना। अज दा तापमान 27 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड। कल नूं मोस्टली सूरज चमकदा रहेगा। तापमान 28 डिग्री। फ्राइडे नूं 29 डिग्री तापमान है, सारा दिन सूरज चमकेगा। सैटरडे नूं मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड 27 डिग्री। संडे नूं बारिश पैण दे पूरे सार नजर आउंदे ने। बदलवाई रहेगी, तापमान 26 डिग्री। मंडे नूं 27 डिग्री टैंपरेचर होणगे। पेट्रोल दी प्राइस अज 1 सेंट उपर जा रही है अद्धी रात तों, ते मंडियां दे भाव जिहड़े ने इह तुहाडे लई जनक जूलर दे सहयोग नाल पेश कीते जांदे ने जी। मंडियां दे भाव च अज इह टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज, डाओ, नैसडैक ते सोना थल्ले है। डालर ते क्रूड ऑयल जिहड़ा इस समय उपर चल रहा है। नवदीप बेंस लीड कर रहा है फंडिंग दी, जो पैसे कट्ठे करना हुंदा जिहड़ा फंड रेजिंग, काफी ज्यादा कट्ठे कीते हुए उन्हें, ते जिहड़ी इलेक्शन है वह लड़न तैयार है कि उन्हें लिबरल बनियो अपना लीडर बनना है ओंटेरियो लिबरल लीडरशिप दे लई। एक गल है, इन्हें आपकी MP की कुर्सी क्यों छड़ी सी, वह बहुत जरूरी है पता करना। क्यों इतने तक कुर्सी बन के बह जाते, कोई छड़ा ही नहीं है, घड़ीस घड़ीस के लाने पैंदे है। आपकी कुर्सी क्यों छड़ी सी, व्हाट्स द रियल रीजन। ये उवें ही है जिमें हुण तक नीना टांगड़ी और हरदीप गरेवाल ने ना तो माफी मंगी है, ना कोई टिप्पणी की है। अजे तो उस स्टैंड चो वधिया सी, वह कहिंदा देखो जी आपां तां हो गई गलती, जिन्ने पैसे मैं खाधे टैक्स पे दे आ चुको। हुण इन्हां ने कोई जवाब नहीं दिता, ना इन्होंने किसी देसी अखबार ने खबर सांझी की है। व्हाट्स गोइंग ऑन मैन, यारी दोस्ती आपकी जगह खबर तो सांझी कर लो। एनीवे जाने आने स्टे ट्यून, बड़ी जल्दी हरप्रीत जी ना भी गलबात करांगे। पहला चलते हैं टिक्का जंक्शन। टिक्का जंक्शन ले 6474294040 केटरिंग करानी है छोटी वे फंक्शन ले, नो प्रॉब्लम 6474294040। लाइव कुकिंग करानी है करे, नो प्रॉब्लम 6474294040। तुसी इन्हां दे बैंकुएट हॉल या लॉज में छोटी वड्डी पार्टी करनी है, नो प्रॉब्लम 6474294040 647-429-4040। मॉर्गेज सोल्यूशन दे गुरप्रीत समरा जी, तुहाडे मकान दी रिन्यूअल आ रही है, तुसीं अपनी मॉर्गेज BC लैंडर तो हटा के A लैंडर नाल करवाउणी है और इंटरेस्ट रेट ते भी बचत करनी है। कॉल 905-460-9099। प्री अप्रूवल भी करवा के दिंदे हन ताकि कॉन्फिडेंस नाल मकान लै सकदे हो। 80-90 हज़ार बेस नूं बनाउण लई चाहीदे ने, मकान लैण वेले इसका भी अरेंजमेंट कीता जांदा है। गुरप्रीत समरा नाल बैठ के डिस्कस करो। 2155 B स्टील्स एवन्यू नियर टॉप रूम यूनिट 32, 905-460-9099, 905-460-9099, 460-9099 इन्हां दा नंबर है। सज्जणा, रब कोलों मंगणा छड्डो, मेहनत करो, रब आपे देवेगा। जिस दिन रब मंगण ते आ गया ना, आखरी साह भी लै जावेगा।
1: बच्चिओ, हां जी, मैनू एक गल दा जवाब दियो कि जदों बिजली चमकदी है, कड़कदी है, ते चमक पहला नजर आउंदी ते आवाज बाद च सुनाई दिंदी है, भला क्यों हुंदा इस तरह?
2: क्योंकि मास्टर साहब साडियां अखां अगे ने कन्न पिछे।
1: लावा तेरे कन्ना दे पिछे।
3: फिट्टे मुँह तेरे। पूरे 40 साल हो गए अपने व्याह नूं, फिर कित्थे सेलिब्रेट करन दा इरादा है?
4: मेरी मन्नो, आपा पिंड ना चलिए।
3: धर्म नाल आ तां तू मेरे मन दी गल ही कहती है, पर इन्नी छेती टिकटां कित्थों मिलणगियां?
4: गिल इंटरनेशनल ट्रैवल तो अपने साथ वर्गा ही साथ है उन्हां दा, अपने क्लाइंट्स दे नाल पिछले 40 साल तों
5: बेदाग सर्विस। गिल इंटरनेशनल ट्रैवल,
4: क्वालिटी सर्विस, वधिया रेट्स ते बेस्ट डीलिंग है उन्हां दी पहचान। इंडिया, पाकिस्तान या दुनिया दे किसी भी कोने च करना होए ट्रैवल,
5: सर्विंग कनाडा नेशन वाइड।
4: 905-671-8400 or 905-796-8800 or visit giltravels.ca.
0: ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਏ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ ਜੀ।
6: ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਲੋ ਟ੍ਰਿਪਲ ਏ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਟੌਪ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਏ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ, ਕਾਲ 647-784-1213, 647-784-1213।

0: CFRC.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
2: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
1: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है ता तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नूं कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
4: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
5: टुडे विच लाइव गलबात करन लई हुणे कॉल करो 905-564-6444। 905-564-6444।

0: हाय रब्बा हुण की बनू
1: जे तुसी कार इंजरी च इन्वॉल्व हो गए हो या सट लगी है गलती तुहाडी या किसी होर दी तां याद रखो इको नाम बराड़ टेंबर पर्सनल इंजरी लॉयर
2: इना कोल है पंज धड़ले दा कैनेडियन जंपा लॉयर्स दी टीम
1: जो दवांदे ने वध तों वध लीगल सेटलमेंट नो अपफ्रंट फी इना दी टीम को